तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं

0: तुम लोग रोना चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग उदास रहना चाहते हो?
1: नहीं।
0: तुम लोग हंसना चाहते हो?